चिंतारा चिंतीरो थरगती का रामतीरा नरुमयालु सरासरा लेउडोरी बातेरा देरबो माया जाउदा राय कातेरा नरुमयालु कोला पारी मोमा।